कृता सहायता कराय श्री सो सेवक सेवा करे जिसमें हुक्म नहाय श्री हुक्म नहीं होवे परमाता कसमें का मेल पाए श्री कसमें का विश्व करे मन चलिया सो कर पाए श्री ताल दे कर लगा श्री ताल दे कर

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैम गुर प्रसाद बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार तुदया गय अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जान मेरा दंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच कीर्तन रूप दे विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी।
0: वड हंस महला चौथा जिनी दर्शन

पर सतगुरु नू मिल के भगती तां होएगी जे हरी प्रभु जी अपनी किरपा करनगे। उहदी किरपा तो बिना असी अधूरे हाँ, किरपा तो बिना गल नहीं बननी। महाराज जी कहिंदे जां जदों हर प्रभ किरपा धारे, जदों हरी प्रभु जी अपनी किरपा करनगे। किरपा दा अर्थ है साडे ते तरस करनगे। जदों वाहिगुरु जी तरस करनगे फिर सतगुरु जी मिलणगे। हर हर सतगुर करहें भगती, फिर असी सतगुरु कोल बैठ के जुड़ के हरी दे नाम दी भगती करांगे। भगती पहाड़ दी चोटी दे बैठ के नहीं हुंदी, भगती जंगलां च बैठ के नहीं हुंदी, भगती तीर्थां दे कंडियां ते दरियावां ते बैठ के नहीं हुंदी। भगती हुंदी है सतसंग दे विच बैठ के। सतसंगत ते जोर क्यों दिता महाराज ने? गुरबाणी विच किते जोर दिता भी तीर्थां दे कंडियां ते जाके बैठो, दरियावां दे कंडियां ते जाके बैठो, किते जोर दिता गुरबाणी च? महाराज जी कहिंदे आ ध्यान रखी, मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमान, ना मन ते हुटे सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल ना तन ते जात। जे मन मैला हो गया तू कादा भगत है? फिर तू भगत है ही नहीं, तेरे अंदर भगती दा जाग हो ही नहीं सकदा क्योंकि मन मैला है। ता गुरु महाराज कहिंदे संगत करो, गुरु संगत, गुरु संगत विच जुड़िया भगती दा जाग लगना है। संगत तो बिना असी अधूरे हाँ। तक साहब जी गुरु रामदास महाराज जी कृपा करदे आ कि जदों हरी प्रभु जी अपना तरस साडे ते करनगे, सानू गुरु संगत मिलेगी, फिर असी सतगुरु जी दा आसरा लेके करें भगती, फिर असी भगती करन जोगे हो जांगे। इस वास्ते मैं बबीहा बन के, दीन निमाणा बन के आप जी अगे

सतगुरु मेरे प्राणा का आसर, मेरी जिंदगी है, मेरा सहारा है। जे प्राण है तो जिंदगी है ना, जे प्राण नहीं तो प्राणी भी नहीं। मेरी जिंदगी हुण सतगुरु है, गुरु तो बगैर मैं कुछ भी नहीं हाँ। मेरा आसरा, मेरा भरोसा, मेरा साथी, मेरा माँ, मेरा पिता, मेरा परिवार हुण सतगुरु ही है। गुरु तो बगैर मैं कुछ भी नहीं हाँ। इसलिए हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी मैनू गुरु का संग दे दिओ, गुरु की संगत दे दिओ, ताकि मैं सतगुरु के चरणा च बैठ भगती दे रंग

संगत वेच वरतान दिया गया बख्शो, जो जी सके आप जिया का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे आप जी करो कृपा।

सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल भोज है राज करेगा खालसा। खुआर होए सा मिलेंगे, खुआर होए सा मिलेंगे। बोले सोनिहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण।

दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए, दसां पातशाहियां दी जोत

आप जियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पे ढावां दर प्रवान करनियां, यात्रावां सफल करनियां।

पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, समूह साध संगत विच वरतौ।

जिस पास बैठिया सोहिए सब नादा विसा हो। सो कोटल गुरु सोवी अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के।

अर आलम जानत वेद वेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव ड्रंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा की विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आजुगाय स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार्य सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उतपाता सकल मलेच्छ करो रण गाता जे आसतो जे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है अह रक्षा हुए ताही सब कल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताके ताप तनक मैं हरिहो रिद्ध सिद्ध घर्मो सब होई दुष्ट शह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्वठो मोह सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सरठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस्पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महल

अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कार सब सवारना सवना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनोम सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन है बसिया जैनो इच्छा सब सदा कीता गुरु विटाओ बड़िया कह नो

जी करो कृपा अमृतमयी बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन जिउण दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल नाम लिया त्रणाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला फिरे।

अपने सदा सदा रंगमान हमारी गणतना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे रखे कर अपने सदा सदा रंगमान सच्चा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण राहौ जीहो पाए पिंड जिन साजिया दित्ता पिन्नन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान जियो पाए पिंड जिन साजिया

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैपं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे असराजे की सुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देखते किए करतना लागी वार महला दूजा
1: जे सच लब्ध वै सुचले हजार एत चरण होंदे गुरबिन को अंधार महला पहला नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचे

वाहे गुरु जी की फतेह। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव बिरंच तर ध्यान नित है जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गड़न समथ

तेज पुंजत है लोग परकासे, देखत दर्श पटक परम्पजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सेवक सिख सदा अतलुभित, अल समूह ज्यों कुसुम सुबासे, विद्यामान गुर आप थप्यो थिर, साचो तखत गुरु रामदासे। तार्यो संसार माया मद मोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रिद अर

0: तीन पवन पर पूर
1: रहे
0: हो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरै असुरै नर, गन गंधर्प खोजंत फिरे, अबनासी अचल अजोनी संभो, पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समरथ प्रभ करण कारण समरथ सदा सोई सर्व।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अम्बरीक जय देव तिरलोचन नामा अवर कबीर पणंग तिन को अवतार पयो काल पिंतर जस जग

बाचा कर सिमरंत तुझे तिन, दुख दरिदर मिट्यो जोखिनं। करम कर तो दरस परस पारस सर, बल पट जस गायो। श्री गुर रामदास जयो जय जग मह, ते हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद

जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड़ियो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार।